नए हफ्ते लंघ गए ने, दोवे संगीतकार हजे भी डेरा लाई बैठे ने, उन्हां दे सामने इधर उधर बिखरे हुए ने, डूंगे हनेरियां दे नाल लबा लब भरे हुए खड्डियां ने उन्हां नूं चार चुफेरियो घेरिया होया है। ओ चिणक जिसने बुखार ज ही अग फड़ी सी एक समय, वो भी बल के एकदम थक चुकी है, ताप ठंडा पै चुका है, महल्ले वाले तक खरिया खोटियां सुना के लांता पा के कदों ते आपो अपने घर मुड़ गए ने। ते दरिया उंज दा उंज बिना पासा लई मुर्दा जिहा पिया है निर्जीव। हुण किसे अर्थ दी तांग नहीं, दोवें थक के हताश हो चुके ने, ना हाथ टोए पट्टण लई उठदे ने, ना जवाबां दी तांग बची है। इस अंदरले बारले खालीपन विचों सिर्फ एक